साथी ट्यून करछन्ते 100.4 आकाशवाणी एफएम डेनबर्ग कटक दिल से दिल तक सुनंतु एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा मन की बात शीर्षक रे भारतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासी उद्देश्य रे उद्बोधन सुनी परिबे मे मास 31 तारीख रविवार दिन 11:00 समय रे आकाशवाणी सबु केन्द्र विविध भारती सेवा डीटीएस सेवा एफएम सेवा एवं आकाशवाणी अधीनस्थ गोष्ठी बेतार केन्द्र रे प्रधानमंत्री मनर कथा सुनिबाकु मिलिब राज्यर समस्त आकाशवाणी केन्द्ररु एही मन की बात रो ओडिया भाषांतर प्रचारित हेब सेही दिन 31 तारीख रविवार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देशवासी उद्देश्य रे उद्बोधन ठीक परे परे एवं पुणी थारे सेही रविवार राति 8:00 समय रे जो श्रोता बंधु माने मन की बात रे निज निजर मत व्यक्त करने को चाहती से माने प्रधानमंत्री कार्यालय वेबसाइट mygov.in रो टोल फ्री नंबर 1800117800 रे फोन करी से मत रेकर्ड करें घोषणा शेष होगा।

भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से

0: पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुनिछन्ति आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। आज सकाळरे मो आपणक साथी स्मृति भक्ति शांति एवं आध्यात्मिकतार सुगंध नै हाजिर हे जाइछि एफएम रेनबो कटक रे। चलंतना आरंभ करबा आजर ए सुंदर सकाळकु एक भक्तिमय परिवेशरो आरंभ करछु भक्ति संगीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाळी।

सुनी चंदी आकाश पाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक आज सकाळ रे आपण माने सुनी चंदी आपणक साथी स्मृति को कार्यक्रम चली छि भक्ति संगीतर अर्घ्य थाळी। तबे प्रभु श्री जगन्नाथक कथा आसिले रथ यात्रा को किए पासरी छिब विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा वर्षक थे रत्न सिंहासन त्याग करी महाप्रभु चली आसती भक्त गहली को भिड़ जमाती नाद करती प्रभु जगन्नाथ कथा रथयात्रा सहित संश्लिष्ट वर्षक से गोटे दिन से पवित्र दिन जिते महाप्रभु निज भक्त पाख को आसती नंदीघोष तालध्वज दर्पदलन रथ में बस भाई भौणी प्रभु बड़दाण्ड को ओह्ल आसती बंधु से दिन धनी गरीब उच्च नीच समस्ते ही जानती एक समस्त मुहरे से गोटे ध्वनि हरि बोल जय जगन्नाथ। रथर दौड़ी टाणवाक भक्त माने भाग्य बोली मने करती कारण विश्वास अच्छी प्रभु रथ टाणिले जीवन सब दुख ह्रास पाई बेले बेले भक्त आसवापी भगवान अटकी था बड़ दांडरे नंदीघोष को

सुन चलिए आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक समय वर्तमान सकाल 6:30 शुणी भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्घ्य थाली केवल मात्र आकाशवाणी एफ एम रेनबो कटक रे आज सकाल रे मुझे आपणी स्मृति कला मेघर देह तार चका आखिरे करुणा भर भक्त डाकिले दौड़ी आस हे जगन्नाथ प्रभु मोर जगन्नाथ तांको कथा तांकर प्रत्येकटी शब्द दिव्य पवित्र एई जेमिति महाप्रभुंक महाप्रसाद अभड़ा आचंडल ब्राह्मण समस्ते बसी एकाठी खाई थांती महाप्रभुंकर अभड़ा एहा केवल भोग नुह एहा हेउचि आशीर्वाद आनंद बजार रे समस्ते एका साथीरे बसी महा आनंदरे महाप्रसाद सेवन करंती। बंधु एई कथाटी आमको सिखाए मनीष र सबुठारु बड़ परिचय हेउचि मानविकता कहाजाए महाप्रसादे गोविंद अर्थात महाप्रसाद रे स्वयं प्रभुंकर बास हाँ आ सेथिपाई त काही केउ दूररु दौड़ी आसंती भक्त माने ए मुठाई महाप्रसाद खाइबा पाई

सुनिश्चित भक्ति संगीत कार्यक्रम अर्घ्य थाली समय वर्तमान सकाल 6:35 शेषे गोटे कथा कही हम बंधु जीवन रे कष्ट आसीब परीक्षा आसीब किंतु मन भीतर भक्ति थिले मनीष केबे भांगी पड़े प्रभु जगन्नाथ आम को सिखाते धैर्य रख भल कर एवं भरोसा केबे भी हार ना निज उपरे जेउठी भी थांतो ना काहेकी आपण माने जेमिति अवस्था रे भी थांतो ना काहेकी केवल थरे भक्तिर सह कुहंतो हे जगन्नाथ जय जगन्नाथ देखिबे मन बहुत हल्का हो मन भितर एक असीम शक्ति आसीजीव तेबे भक्तिर ए सुंदर यात्रा रे आज पई एतिके प्रभु जगन्नाथंकर अपार कृपा समस्तंक उपर एमिति रहिताउ आपणंक घरे सुख शांति समृद्धि सबुबले रहिताउ एतिकी ही कामना तेबे।

ट्यून करिछन्ति आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। समय वर्तमान सकाळ 6:40 आरंभ करुछु। अति बड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवत आज शुणंतु एहार 49 भाग। प्रयोजना सुहास।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी।

0: याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुबह की किरणें लेकर आई है एक नई उम्मीद, हर पल हो खुशियों से भरा, बस यही है दिल की उम्मीद। मुस्कुराइए क्योंकि जिंदगी का हर सवेरा कहता है आज का दिन कल से बेहतर जरूर होगा।

जिंदगी का हर सवेरा कहता है आज का दिन कल से बेहतर जरूर होगा। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आपकी फेवरेट मॉर्निंग शो सुबह सकाळ। मो आपणक सहित अछि आपणक हम सफर हो स्टार जी स्मृति। ताले चलंतु ना ए किछि क्षण किछि समय धरी आमे आपणक नै जाउछु से म्यूजिकल वर्ल्ड को, से पॉजिटिव वाइब्स को, से मोटिवेशन, से हस खुशी रो, से मस्त मॉर्निंग को। बिल्कुल कारण आपण माने सुनी छंती एफएम रेनबो कटक को। एंड आज सकाल आपण मन को आउ टिके पॉजिटिवली भरी देबा पई आपण का साथी स्मृति रही छी। हे तो चलिए उठी पढ़ंतु, स्ट्रेच करंतु, चा कप को धरंतु, कारण आरंभ हो जाय छी आपण सकाल फेवरेट शो जहां को कह जाए शुभ सकाल। सो आप समस्त जो मैंने एफएम रेनबो को वर्तमान ट्यून कर शुणुंट समस्त स्मृति तरफ एफएम रेनबो तरफ गुड मॉर्निंग शुभ सकाल। आगे ब्यूटीफुल ट्रक चलते सुंदर सकाल को एंजॉय करिबा ए ब्यूटीफुल म्यूजिक सहित।

सो कटक रु कोरापुट पुरी रु संबलपुर सब जगार सकाल ए फ्रेश हवा सह आमे पहुंची गलुणी आपणंक पाखरे दिल से दिल तक जदि आपण माने ऑफिस पई रेडी होउछंदी किमा मॉर्निंग वॉक रे छंदी नहले घरे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूछंदी ताले वॉल्यूम टिके बढ़े दियंत ना सर कारण नेक्स्ट किछे मिनिट हव पूरा पूरी एंटरटेनमेंट पॉजिटिवली आउ फुल ऑन एफएम मस्ती सजनी रे आ रहा है एक ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल मॉर्निंग में।

विनायक दामोदर सावरकर 28 मे 1883 मसीहा महाराष्ट्रर नासिक जिल्लार भागोर ग्रामरे जन्मग्रहण करिथिले से छोटबेळु देशभक्ति साहसिकता पाई से परिचित थिले। तंग पितांक नाम दामोदर पंत सावरकर एवं मांक नाम राधाबाई थिला। शिशुबेळे ही से देशर स्वाधीनता पाई किछि करिवार संकल्प नेइथिले। सावरकर पुणेर फर्गुसन कलेजर शिक्षा ग्रहण करिथिले। परे से आईन पढ़िबा पई इंग्लैंड जाइथिले। लंडन रे रहिबा समय रे भारतीय छात्रमानंक मध्यरे देशभक्तिर भावना प्रचार करिथिले। सेठी से इंडियन हाउस सह जड़ित हई विप्लवी कार्यकलाप रे भाग नेइथिले। सावरकर ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे सशस्त्र विप्लवर पक्षपाती थिले। बंधु युवक युवतीमानंकु एकत्र करी देशमाता पाई लढ़िबार प्रेरणा देइथिले। अभिनव भारत नामक गुप्त विप्लवी संगठन गठन करिथिले सावरकर। तांक भाषण तांक लेखा युवकमानंक मध्यरे देश प्रेमर एक अद्भुत अग्नि जळौथिला। 1910 मसीहारे ब्रिटिश सरकार सावरकरंकु गिरफ करिथिले। जहाजरु समुद्रकु झाप देइ पळेबाकु चेष्टा करिथिले किंतु पुणी धरा पडि जाइथिले। तांकु दुईटे जीवन कारदंड दिया अंडामन निकोबार सेल्युलर जेल कलापाणी को पठाई जाइथिला। सेठारे बंदी मानंकु अत्यंत कठिन निर्यातना दिया जाउथिला। सावरकरंकु तेल घाणी टाणीबा कठिन परिश्रम करिबा परि अमानवीय शास्ति दिया जाउथिला। सेठी तथापि तांक भितरे से देशप्रेम बा से साहस से किछि करि देखैबार जो उत्साह भांगी पडिनथिला। तबे साहित्य एवं लेखक जीवन रे मध्य सावरकर जने उत्कृष्ट कवि एवं लेखक थिले। अनेक कविता नाटक पुस्तक लिखिछन्ते। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, हिंदुत्व, माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। तांको लेखार देशप्रेम साहस राष्ट्रवाद भावना देखिबा को मिले। बंधु सावरकर समाज रे जो अछूत थिला छुआछूती भेदभाव जाति भेदभाव विरुद्ध रे काम करथिले। समस्त हिंदू मानंको एकत्र करिबाकु से आह्वान करिथिले। महिला शिक्षा समाज सुधारककु मध्य समर्थन करिथिले। से सावरकर हिंदुत्व धारणाकु लोकप्रिय करिथिले। तांको मत अनुसारे भारत हिंदू संस्कृतिर भूमि एवं एहार संस्कृतिकु एकता अत्यंत जरूरी। एई भावना पई से अनेकंक नजरे प्रसन्न।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया।

0: बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण

0: केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
1: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है, ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मॉनसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू, हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states, worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
3: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined

0: समाधान समारोह 2026 बंधुगण मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन थिबा पारिवारिक विवाद दुर्घटना जनित क्षतिपूरण मामला चेक बाउंस मामला भू अधिग्रहण जनित मामला रफा योग्य फौजदारी मामला श्रम विवाद ओ अन्यान्य उपयुक्त मामला जेउथरे आपोस बुझामणा हेबा संभव आगामी अगस्त मास 21 22 ओ 23 तारीख रे एक विशेष लोक अदालत माध्यम रे भारतर मान्यवर सुप्रीम कोर्ट नुआ दिल्ली ठारे फैसला करा जिवो यहार सविशेष विवरणी पई निकटस्थ आईन सेवा अनुष्ठान किंबा 15100 रे जोगाजोग करंतु।
1: हे फ्रेंड्स वेलकम बैक म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आपण माने ट्यून करी छंती सकाळ सकाळ सुणु छंती आम सहित कनेक्टेड हे जाई छंती। तो दोस्तों सूरज की पहली किरण लेकर आई है नई उमंग, ठंडी हवाओं में खुला है संगीत का नया रंग। तो चलिए मुस्कुराइए क्योंकि शुरू होने जा रहा है आपका अपना प्यारा सा मॉर्निंग शो। नमस्कार फ्रेंड्स आपण माने सुनि छंदी सकाळर सबुठ सुंदर म्यूजिकल जर्नी। यस आरंभ होई जाय छी मॉर्निंग मेलोडी। आउ आपणक सहित आज सकाळरे मु अछि आपणक हम सफर होस्ट स्मृति। आउ आगामी किछि समय धरि आमे नै के आसुछु सुंदर सुंदर गीत पॉजिटिव कथा फ्रेश वाइब्स आउ सकाळर सुंदर अनुभूति। चले चलंतु गोटे काम करंतु उठि पडंतु एंड विंडोज को खोली दियंतु फ्रेश हवा को फील करंतु आउ गोटे गरम गरमा गरम चाय माने चा कप सहित एंजॉय करंतु आज रो म्यूजिकल सफर को कारण एबे बाजिबो एमती सब मेलोडियस सॉन्ग जहां आपनको मन को करि दबो आउ टिके रिलैक्स एंड रिफ्रेश। ओके बिल्कुल निजर फेवरेट वन को कहंतु ना आई लव यू।

सोनी छंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक तेब ये कही रखु आपण शुणा को भूलिनी आज ठीक सका 9:30 प्रायोजित कार्यक्रम भारत मसला स्कल टाइम केवल 9:30 आज शुणे प्रायोजित कार्यक्रम भारत मसला स्कल टाइम।

0: कौन रही आपणकर संदेश आपणकर कौन रही आईडिया से विषय में आपण मैंने आम सहित कनेक्ट हूँ 0671-2303-153 नंबर रे एंड कहू कहू देखिवा फोन रिंग हवा स्टार्ट हो गलानी आज रो फर्स्ट कॉलर किए अच्छा देखिवा हेलो
1: जब तक रहे तन में जिया वादा रहा वो साथिया हम तुम्हारा

0: लिए जय जगन्नाथ नमस्कार।
1: जय जगन्नाथ नमस्कार। आम सहित किए जोड़ नारायण भाई?
0: मु रेडियो लवर नारायण प्रधान बी ब्रह्मपुर बुगुड़ा गंजाम। आपको बहुत मिस कलु पदयात्रा आकाशवाणी कटक केन्द्र जाइलु भेटिल बहुत दुख लगे।
1: अच्छा इसी मुझे जानी निश्चय आसी था। ओके ठीक अच्छे आपण मैंने आसिले आकाशवाणी को एति भल पाउछन्ती एंड आपण मैंने आकाशवाणी रो सब कार्यक्रम रे पार्टिसिपेट करछन्ती सेटा बहुत बड़ कथा। अच्छा नारायण भाई केमती अछन्ती?
0: बहुत बढ़िया
1: अच्छी खुशी रही बिंदास रही बिंदास एमती बिंदास था मुझे पूरा पूरी बिंदास अच्छी आपय। तेज कह खाद्य अपचय को किपर आम कमे पार
0: देखु देखी बहुत गुडा भोजी लोक जैक खाते तार अधिक मानते रसमेंट पका चिंता करेंगे झीवर बापा भोजी बाहर भोजी करते कष्ट परिश्रम ढाल बहुत रोजगार कर टा स्थिर खर्च करू कि आम चिंता करा दरकार आम जी खाइबा से आ कहीं घर आम जानते घर आम नष्ट करना घर आम ठीक माप चुपे चलु तेनालीराम देखु अन्य किए दौर हमारे नष्ट हो जाऊ तार हमारे कौन जाए तेणु आम सब चिंता करा दरकार बाहर हूं कि आम घर हूं जिते आम जी खाऊ खाई आम से चाहवा अधिक चाहे आम दरकार ना।
1: बिल्कुल बहुत बढ़िया कथ बहुत सुंदर कथा कहले जे एई प्रकार मानसिकता को आमको प्रथमे त्याग करबा दरकार जे आमे घरे जदि सबु किछि कि भाग बांटी की बा मापी चुपी की खाउछु बा व्यवहार करुछु सबु किछि जिनिस बाहर जेते बळे जहां को भोजी को जाउछु बा सेठी खाद्य खाउछु त से सबु जिनिस को मध्ये आम निजर भळी सेटा को भाबीबा उचित। बहुत बढ़िया कथा थैंक यू सो मच नारायण भाई आज कॉल करथिबारु। नमस्कार। बहुत सुंदर सुंदर कथा ना एमती पॉइंट आपण माने भी गोटे गोटे दिग प्रति निहाती भाव रे आम सहित कनेक्ट हेबे एंड कहिबे एटा मोर विश्वास अछि तो फटाफट कनेक्ट हे जानतो 0671230315 एई नंबर रे स्मृति पचारुछि आज आपणंकु जे किभळी भाव रे खाद्य अपचय को आमे कमेई परिबा बा रोकी परिबा कोन रहिछि प्राथमिक पदक्षेप बा आमे कोभळी भाव रे से पदक्षेप ग्रहण करि परिबा। देखबा आउ जने कॉलर आसिलेनि के अछन्ति। हेलो
2: हेलो मैम नमस्कार। जय जगन्नाथ।
1: जय जगन्नाथ नमस्कार। किए कहउछन्ती?
2: नाम प्रफुल्ल प्रधान कहउछी कुआनपाड़ माणिया बंधर।
1: माणिया बंधर प्रफुल्ल भाई हम सहित कनेक्ट हे जाइछन्ती। अच्छा प्रफुल्ल भाई कहंतु किभली भाबरे खाद्य अपचय को कमी परिबा?
2: मैम देखंतु खाद्य अपचय को तो आमे समस्त निश्चित कमी परिबा किंतु जो माने कमी परिबे से माने हेलो अमणित खाद्य कैसे परिश्रम कले मैं खाद्य टे हूँ देखु किए बाहर भोजी हू घर भोजी हू कि निज आम घर रोष जेकोसी आम निजे निजे कंट्रोल रहा आम सब जिन ठीक है गोटे लोक भोजी बंची पार तापर देखु आम जो बर्तमान भोजी हूँ आम सब धर गाँ गहली जेको भोजी हेले आम बसिकी खाऊे आम जी जी आम पड़ोसी जाने मगुच्च ना भाई मत यू टी आम दौचे कि बर्तमान जो आम कौन कह जो बर्तमान मागिकिया सिस्टम बंपे सिस्टम आम सब सब कौन कर खातु न खातु आगे जाऊरी तेरे मागि जिते भेर अच्छे सब मागि गोटे नि जाना दरकार आम कौन खाइले आमको सुट कर आम देह कौटा जाऊँ लोक से सब देख न लोक जो भेर देखते आगे भेर मागि आनुमें मागि आना फाल फुल फुल खाइले खाइले ना फोपाड़े तेनाली जाना दरकार गोटे लोक भोजी कर लोक खाइबा शांति आस खाइबे शांति जीवे कितने बुझीपारती प्रत्येक जिन मागिक आगे खल बाधे दिखती जस्ट एवं मैम आम जा गोटे भोजी कौन कहे आम तो कहले तो बर्तमान भल लगे पैसा तुम्हारे पुतुरा हिसाब हम मुझे व्यस्त हेली दुर्व्यस्त हेली बोले से एमती गोटे कम कला मुझे बिव्रत हेली मुझे पाखु जिस पलि

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

सुनी क्षति आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक वर्तमान सुनंतो प्रायोजित कार्यक्रम भारत मसला स्कूल टाइम।

दिल से दिल तक। सुनिश्चित आज सकल साथी स्मृति को प्रेम केवल आई लव यू कहिबार ना नुह, प्रेम माने होची केयर रेस्पेक्ट ट्रस्ट आउ कहार खुशी रे निजर खुशी को खोजिबा। ए केबे केबे मेसेज बा नोटिफिकेशन आसिले ताको देखिकी स्माइल आसी जाए मुहरे, तो केबे कहार भॉइस सुनिले पूरा दिन जाक सुंदर लगी थाए। प्रेम गोटे अनुभूति जहां लाइफ को मेलोडियस करी देई थाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकली योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक। और आज की सुबह मैं हूँ आपकी हम सफर होस्ट स्मृति आपके साथ। और सो शुरू हो चुका है डायल इन लाइव। समय वर्तमान सकाल 10:02 ऑलरेडी है गलाडी। सो जलंतु आपण मानकर मीठा मीठा लव लेटर्स को पढ़ुची एंड आपण मानक अनुरोध गीत को प्ले करौची। आम सहित कनेक्ट होती व्हाट्सएप रे समीर एंड सस्मिता खटुआ नरसिंहपुर केन्द्रापड़ा। शुभ सकाल शुभेच्छा जनई स्मृति मैम को। थैंक यू सो मच आपण को मध्य शुभ सकाल ढेर सारा शुभेच्छा। सो शुणापी चाहते तू एका आम साहा भरोसा चलचित्र गोटे सुंदर गीत छोट यही हृदय को रखी थी साईती।

क्या बात है, यशुदास जी की आवाज में ये सब गाना ना जब भी हम लोग सुनते हैं एकदम से ग्रीनी ग्रीनी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर से यशुदास जी की आवाज में सुनना चाहते हैं। और एक श्रोता सावन को आने दो फिल्म का 1979 मूवी का ये गाना है चांद जैसे मुखड़े पे। अब ये गीत को सुनिया पाई चाहिए प्रदीप कुमार सामंत सिंघार प्रगति कुटीर बाबा तिलक नगर सेक्टर 12 सीडीए कटक रू स्पेशल डेडिकेट करी छंती टू यू। थैंक यू एंड सब श्रोता स्टाफ्स मानन को गुड मॉर्निंग जणी छंती।

प्यार तो सभी को चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही, मगर सभी को प्यार चाहिए मेरे दोस्तों। प्यार के बिना ये जिंदगी अधूरी है, फीका है। सुनी चंदी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आज सकल रे आपण का सह आपण का साथे स्मृति रही छे। समय गलानी 10:30 एंड सो चली छी रेनबो एसएमएस। आम सहित जोड़ी चंदी उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सेक्टर 11 सीडीए कटक रु लेखले स्मृति अपा नमस्कार, सब स्टाफ मानक नमस्कार, सब श्रोता मानक गुड मॉर्निंग, सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आज समस्त कार्यक्रम प्रस्तुति एवं उपस्थापना आपणको हृदय ढेर सारा शुभेच्छा शुभकामना, थैंक यू सो मच। एंड सुनिया पई चाहिचंती राधा ओडिया फिल्म रो गीत नीलो आकाश नीलिमा कई।

ओके वेलकम बैक ट्यून करिछन दिया आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक 100.4 दिल से दिल तक सो चली छे रेनबो एसएमएस रेनबो एसएमएस रो गोटे खास कथा कण जानी छन सेगमेंट रे विभिन्न प्रकार गीत एका संगे शुणापी मिलता है।

So, दोस्तों हमको उड़ीसा के अंदर तो सभी सुनते हैं मगर उड़ीसा के बाहर भी बहुत श्रोताएं हैं जो हमको रेगुलर सुनते हैं और हमसे मैसेज के माध्यम से जुड़ते हैं रेनबो एसएमएस शो में. सो अभी हमसे जुड़े हुए हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोकीलाल वर्मा हमसे जुड़े हुए हैं दत्तरेंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से. एंड सुनना चाहते हैं विजय पथ का ये गाना राह में उनसे मुलाकात हो गई. क्या बात है, बहुत ही सुंदर गाना है. लिख रहे हैं प्रिया आरजे स्मृति जी, सप्रेम नमस्कार और जय जगन्नाथ जी. अभिवादन स्वीकार करें जी. एफएम रेनबो कटक से प्रसारित बेहतरीन गीतों को सुनकर यकीन मानिए दिल दिमाग तरोताजा हो जाता है और रात के कार्यक्रम को सुनकर दिन भर की थकावट दूर हो जाता है. क्या बात है, इसलिए दिल धन्यवाद भी दे रहे हैं हमको. थैंक यू सो मच. तो चलिए विजय पथ का ये सुंदर सा गाना आपके लिए पहुंच रहा है.

जिससे डरते थे वही बात हो गई। ये देखिए समय आगे आगे बढ़ चुका है, बढ़ता चला जा रहा है। 10:41 ऑलरेडी हो चुका है। तभी चलो तो नेक्स्ट SMS चिन्हा अचिन्हा ओडिया चलचित्र गीत जगतर नाथ आहे जगन्नाथ ये गीत शुणापी चाहते भुवनेश्वर मिश्र कंठर समीक्षा सदीक्षा संतोष निर्मला मामाली कांतो लाठगड़ लिखले जय श्री जगन्नाथ। आज सकाल अर्घ्यथा जगन्नाथ विषय आलोचना भक्ति भावन भिजे सुंदर उपस्थापना अशेष अशेष धन्यवाद मैम थैंक यू सो मच। तेज चलत आपण मनपसंद गीत शुणी दौर।

0: ଖଟିଏ ପାଗଲ ପିଲା ପାଗଲ ନିମୋ।
1: ओके सो 10:49 ऑलरेडी हेलानी एंड चेष्टा करिवि यार समस्तंकर गीत माने मैक्सिमम टू मैक्सिमम गीत सुनिबा पई। ओ माय लव फिल्म रो गीत सुनिया पई चाहि चंदी के पवन रे चलचित्र ओ माय लव चलचित्र रो गीत के पवन रे गीत टिक सुनिया पई चाहि चंदी सुकांत माझी बिसोई मयूरभंज रो। ओके एंड लिखले अपा नमस्कार ए गीत टी मते सुनि देबे निश्चय सुनि देबे के पवन रे ओ माय लव फिल्म रो।

सो चलिए नेक्स्ट एसएमएस हमसे जुड़े हुए हैं जिला झारखंड बड़ा बाम्बो सुपाई साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश निशा कुमारी, रेशमा दीपाली और देवेंद्र जी सुनना चाहते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का कोई सा भी एक गाना। तो चलिए मेरे पसंद का राजा हिंदुस्तानी का ये टाइटल ट्रैक आपको सुना देते हैं।

दोस्तों हमको यहीं से दीजिए विदाय विदा दिअन्तु कारण परवर्ती आर्जे आसी हाजिर हेइगलाणी एंड समय भी सरी सरी आसिलाणी एमती शुणुथान्तु एफएम रेनबो कटक एंड कहुथान्तु दिल से दिल तक।

आज अपना अंदाज कुछ मौसम रंगीन है, तारीफ करो या चुप रहो, जुम दोनों ही संगीन है। मौसम कथा कौन कहबी साथी छाड़न तो मौसम केते बेले खरा होछि त केते बेले वर्षा होछि एवं खरा टिके हेला माने मन दुख होछि किंतु कौन करा जीव खरा दिन माने ऑब्वियसली खरा ही हबो तापर वर्षा को देखि दिला माने जेमती मयूर खुशी हे जायनी जे मेघ को देखि सारा परे बस आमर अवस्था ठीक सेई भलिया होछि जाहु एते खरा रु टिके मुक्ति तो मिलिला। सो मौसम कथा तो डिस्कशन एमती हमर चली थिबो गीत सहित सिउली अछि आपनको सहित यस। सो सिउली कथा दिथला जे आपनको सहित गोटे सुंदर दिन रे देखा हबो यस तो आसी के पहुंच जाई छी आपनको पाखरे आपन सुनु छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आउ दिल से दिल तक को छंती। सो आउ कथाबार्ता आगको तो एमती हमर जारी रहिथबो किंतु वर्तमान टिके म आपनको सुनियो को चाहू छी गोटे मीठा गीतटि चलन सुनी दूची आशा भोसले और मोहम्मद रफी कंठ रु ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय करता हूं।

0: समाधान समारोह 2026 बंधुगण मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन थिबा पारिवारिक विवाद दुर्घटना जनित क्षतिपूरण मामला चेक बाउंस मामला भू अधिग्रहण जनित मामला रफा योग्य फौजदारी मामला श्रम विवाद ओ अन्यान्य उपयुक्त मामला जेउथरे आपोस बुझामणा हेबा संभव आगामी अगस्त मास 21 22 ओ 23 तारीख रे एक विशेष लोक अदालत माध्यम रे भारतर माननीय सुप्रीम कोर्ट नुआ दिल्ली ठारे फैसला करा जिवो यहार सविशेष विवरणी पई निकटस्थ आईन सेवा अनुष्ठान किंबा 15100 रे जोगाजोग करंतु।
1: तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं हो, तुम मेरी आदत, मेरी जिम्मेदारी हो। साथ चलना ही इश्क नहीं होता, साथ निभाना ही असली समझदारी होता है।

जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में, जिस दिन से

ने प्यार हो गया ओ मनु तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा मनु तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा

धक धक धक धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हमसे वो थी और हमारा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गए।

मैंने खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।

बिल्कुल जदि आम एबेठ जुगाड़ न करिबा एबेठ जदि आम गछ न लगेबा ताहले भविष्य रे आम निजे ही हैरान हेबा एवं आमर परवर्ती पीढ़ी जो माने अछंती से माने मध्य आम पाई मध्य हैरान हेबे। साथी आज समय रे खरा बढ़ुची बर्षार धारा बदलुची वातावरण दूषित होउची एवं यहार गोटे बड़ कारण होउची गछर संख्या कमिजिबा। आमे टेक्नोलॉजी आगको बढ़ुचु किंतु प्रकृति को हराई देले सही उन्नतिर कौनसी मूल्य रहिबनी सेथिपई आमर मध्य दायित्व ना गच्छ को बंचाई रखिबारो।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा के मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। अनियमितताओं की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन कमियों को दूर किया जाएगा और उचित समाधान निकाले जाएंगे।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि से 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। ईद उल अजहा का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर नमाज नहीं अदा करने की अपील की है। बोर्ड ने निर्धारित स्थानों पर ही लोगों को पशु की कुर्बानी देने के निर्देश के साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी की फोटो या वीडियो साझा न करने को कहा है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

बेले बेले बहुत सारा गीत आम लिस्ट रे थाए जो गुड़ाक कि आम लेखिकी मध्य रखी था ना मन रखी था जिते बड़े आम मन दुख थाए कि किसी गोटे खुशी मुहूर्त थाए से समय से गीत गुड़ी को प्ले करके शुणा को भारी इच्छा हुए। गीत माने ही सुंदर, को गीत खराब को गीत भल ताकू तो कहुपरि, किंतु समस्त गोटे निजर निजर पसंदीदा गीत रही था, निजर फेवरेट गीत रही था और से फेवरेट गीत को आम बारंबार शुणा को पसंद करोटी ट्रावेल करुँचे से गीत प्ले करदे। घर जदि आम कि गोटे कम व्यस्त रोचु से गीत प्ले करस्त रही जाऊ, नहले आम जदि कौन पार्टी किंबा फंक्शंस को जाई थाउ अटेंड करिया पाई सेठी मध्य मन मन भाव तो काश ये गीतटा बाजनता के टिके सुने दियंती केते बढ़िया गीतटा। बस से भल गीत सुनिया पाई आमर फेवरेट गीत सुनिया पाई आमे सबु बेले अनेकी बसी थाउ सेथि पाई तो साथी गीत सुनिबा हेउछि आम समस्तर गोटे भल गुण जहाँ द्वारा कि आमर मन आमर माइंड फ्रेस हो थाए आम सबकि काम को इजिली कर पारि थाउ। तेणु कथार कथार गीतरे गीतरे आम पाखे गोटे मेसेज आसी पहुंची जाइए। कंटला आठगढ़ संतोष बेहरा मेसेज कर लिखिं जय श्री राधे राधे सिउली मैम नमस्कार, जो गीत जिते शुणिले पुणी इच्छा हुए शुणा को से लिखिं दुईटा गीत अति फेवरेट जमीक बारंबार से शुणा को बहुत भल पाती। ओडिया फिल्म रीतट हूँ रूपा सगड़ी सुना कनिया और हिंदी फिल्म सॉन्ग हूँ तो प्यार है किसी और का। अरे बाबा बहुत ही सुंदर गीत से लिखी तेनाली दुईट गीत मध्य मो पाखे बर्तमान गोटे गीत टी प्लेलीस्ट मोर अच्छी तो मुझे शुणा को चाहिए आपण को आप कहीं मन दुख करेंगे शुणा दूसरी मीठा गीत टी। हाँ एसएमएस बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल

0: में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिज सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
4: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान

2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: આપણે સુણછવાંદી સિવલી કો કેવડાઓ કેવડા 100.4 આકાશવાણી એફએમ રેઇનબો કટક દિલસી દિલતક સાથે અમાર આંચળિક સંવાદ સુણી પરિબે એ વિજ્ઞાપન વિરતી પરે
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी

दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

दोस्ती तो एक झोंका है हवा का, दोस्ती तो एक नाम है वफा का, औरों के लिए चाहे कुछ भी हो, हमारे लिए तो एक हसीन तोहफा है खुदा का। साथी घंटा घंटा टिकटिके कहलाने आपणक ठरो विदा नवापाई, किंतु आपणक तो मैं एका करिके जीबिनी, आपणक सहित जोड़ी ही जीबे आपणकर आउ जणे साथी। आहा सस्पेंस अछि कहिबिनी दंगना, आपणक सेतिबे आम सहित जोड़ी ही रहयक पड़िबो। आउ हां सिउली जाउछि माने कथा दउछि जे आउ दिने आपणक सहित नियंत भाव पर देखाबो, तणो आजबे मते विदाय दियंतु आ सुनथांतु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कोथांतु। आजबे मते विदाय दियंतु, नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें।

0: ट्यून करिसंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक नंबर 0671230315 रे कॉल करी शेयर करी परबे कहां सहित आपनो मन खली सब कथा शेयर करी परंदी हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार
0: नमस्कार के कोथले कोठु कोथले
1: मु बुल्लू पटनायक घसीपुरा आनंदपुर केंदुझर कोथली
0: आज्ञा कोहंतु कहां सहित मन खला कथा हे परंती
1: हां मु जणे मन खला व्यक्ति विशेष मु स्पष्टवादी मिछ कथा कहे नहीं एवं सब खोला खुली कहि थाए काहे कि ना मु जीवन रो मूल्य बुझी छी आत्मार मूल्य बुझी छी सब किछ अस्थाई केवल स्थाई होउछि संपर्क संपर्क को जोड़िया पाई आत्मार आत्मार मिलन पाई एकमात्र लोड़ा खोला खुली मन खुली कथा कहिबा आ गुटे जदि आमे सत्य उपरे जीवा मन खुली कथा कहिबा तबे सबु किछि समस्या रो समाधान हे जीवो मु खोला हुदर जने व्यक्ति
0: ठीक कथा थैंक यू आपनो कॉल करले
1: धन्यवाद मैडम नमस्कार
0: धन्यवाद नंबर 0671230315 रे आपनो भी कॉल करि परिबे एवं कहि परिबे कहा सहित मन खोला कथा शेयर करि परंदी हेलो
2: जय जगन्नाथ नमस्कार
0: जय जगन्नाथ के कोथले कोडू कोथले
2: मो कोथले राजेश नायक चर्चिका बाजार जगतसिंहपुर
0: आज्ञा कोन तो कहा सहित मन खोला कथा शेयर करि परंती
2: कोन एउटा कथा रहछि टिकिले शिक्षन्ति तनो बहुत मु धोका खाइ छी जीवन ने बहुत लोक बेईमान करछन्ति आपन जाकु आपन का सीक्रेट कथा शेयर करिवे जे पूरा हाटनाट कर दबो माने तार दुनिया डिंगरा बाडे दबो तेणु मु बर्तमान स्टेज रे का सहित शेयर करे नि मु मन कथा मन रे रुहे भगवान का सहित टिके आराधना रे रुहे तेणु भगवान निश्चिंत बाट बाहर करती मु जेतेबेले मते किसी प्रोब्लेम आसे मु निरोळा रे बसे परगत वस्तवत कौन से मंदिर काम आंड क्वाड बसे का सहित शेयर करिया मु भल पाए शेयर कला माने बहुत विपद अच्छी तेणु मु से अनुसार का सहित शेयर एवं ही आ करूनी
0: ओके ठीक अच्छे थैंक यू आप निज मन कथा शेयर कले जय जगन्नाथ नंबर 0671230315 रे आप शेयर करी परिबे जे मन खोला कथा कहा सहित शेयर करी परंदी।

0: ट्यून करी शुन्दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक नंबर 0671-230-3153 रे कॉल करी परिवे एवं जाने परिवे जे कहाँ सहिता अपना मनोखला कथा शेयर करी परंदी हेलो
1: हेलो जय जगन्नाथ सोनिया
0: जय जगन्नाथ की कोथिले कोड कोथिले
1: विजय कुमार दास सौरी हट
0: आज्ञा कहाँ सहित मनोखला कथा शेयर करी परंदी
1: ना गुरु तो संगे संगे शेयर करथुले तोले पाठ पढथुलु सप्तम अष्टमी संगे संगे पूरा से पिला बलु संग से बंधु
0: परस्पर
1: तो 25 वर्ष पूरी गला 25 वर्ष सब कथा शेयर करे आउ किए अछि।

नमस्कार वर्तमान मुख्य संवाद सह मु सत्यरंजन महापात्र पुलिस बाहिनी को अधिक नागरिक केन्द्रिक होबा लागि आह्वान देले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम पुलिस को सम्मानजनक राष्ट्रपति पुलिस ध्वजा प्रदान सीबीएसई परीक्षा में अनस्क्रीन मूल्यांकन व्यवस्था स्वच्छता प्रदान करे बोली कहिले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कृषि और कृषक कल्याण को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करछन्ती कहिले केन्द्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीवीआईपी गस्त और सुरक्षा संबंधी तथ्य प्रकाश क्षेत्र में कार्यानुष्ठान ग्रहण करे सरकार श्रेष्ठत्व एकाठी होबार वार्ता नहीं आज पालन विश्व रक्त कर्कट दिवस गांधीनगर आज 340 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन एवं भित्तिप्रस्तर स्थापन कले केन्द्र मंत्री अमित शाह कहले बेआईन प्रवासी चिह्नट और देशांतर करने सरकार प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज लोकसेवा भवन ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा 2024 रे प्रथम स्थान अधिकार कर केन्दुझर जिलार बुबुन साहू को संबर्धित करने सहित सफलता अभिनंदन जनाई आसंता मास पहिलारु चाषी को प्रमाणिक विहन बंटन प्रक्रिया आरंभ करने कृषि विभाग पक्ष निर्देश दी रथ चारण निर्माण पूरी में पहुंचला तालकाठ प्रथम पर्यायर ढेंकानालरु 18 खंड तालकाठ आसी पहुंचा सूचना एवं राज्यर विभिन्न स्थान में मुसलमान संप्रदायर भाई और भौणी माने पालन करछन्ती ईद उज जुहा वर्तमान मुख्य संवाद समाप्त करछु परवर्ती मुख्य संवाद शुणिपारे राति 7:00।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकहीं विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

0: भूमिका निर्व्यूढ़ा आसीत। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू अद्य आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षाः अधिकं नागरिकाभिमुखा भवेयुः। सहैव समाजस्य दुर्बल वर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः अद्य प्रातः गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरणं संचलने सिक्किम आरक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय संबोधितवती। तया राज्ये विधि व्यवस्थायाः पालने सहैव आपद प्रबंधने सिक्किम आरक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: अत्रांतरे उल्लास योजनायाः अन्तर्गतं सिक्किम राज्यम् आधिकारिक रूपेण पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। घोषणेयं यावत् गतदिवसे गंगटोक नगरे राष्ट्रपतिः मुर्मुः इत्यस्याः गरिमामय उपस्थितौ सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे विहिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये जायमाना शिथिल युद्ध विरामावस्था इदानीं गंभीर संकटे समापतिता। यतः हि द्वाभ्याम् अपि पक्षाभ्याम् होर्मुज इत्यस्य समीपे परस्परं सैन्य आक्रमणानि कृतानि। अमेरिकी सेनायाः कथनमस्ति यत् तया ईरान देशस्य चत्वारि आक्रामक ड्रोन विमानानि निपातितानि तथा च बंदर अब्बास क्षेत्रे स्थिते ड्रोन नियंत्रण केन्द्रे भीषण प्रहारः कृतः। अत्रांतरे ईरानस्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स इति दलेन अपि एतस्य प्रहारस्य प्रमाणत्वेन प्रोक्तं यत् प्रतिकार स्वरूपेण तैः अमेरिकी सैन्य शिविरे आक्रमणं विहितम्। कुवैत प्रशासनेन पूर्वमेव सूचितम् आसीत् यत् ते स्वकीये क्षेत्रे शत्रुपक्षस्य ड्रोन आक्रमणानां दृढ प्रतिकारं कुर्वन्ति। अस्याः सद्यो जातायाः सैन्य उत्तेजनायाः कारणेन वाशिंगटन तेहरान नगरयोः मध्ये युद्ध विरामस्य विस्ताराय जायमानैः कूटनीतिक प्रयासैः सहसा महती क्षतिः अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य पुनरेकदा अवैध प्रवासिनां अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षा सुदृढ़ीकर्तुं च सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनरपि दृढ़तया प्रतिपादितवान्। गांधीनगरे चत्वारिंशदधिक त्रिंशत कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्। यतः एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय षट्शतं हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्म वार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाह अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रांतरे सः अहमदाबाद नगरे आगामीनां ओलंपिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्व आरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षा करिष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अद्य सीबीएसई इति द्वादश कक्षायाः मूल्यांकनं प्रक्रियायां सहैव एतस्य नूतन पटलाधारित अंकन प्रणाल्यां च जातानां प्राविधिक त्रुटीनां च संज्ञानं गृहीतवान्। मन्त्रिणाम् एतेषां विसंगतीनां विषये छात्राणां शंका समानार्थं दृढ आश्वासनं प्रदत्तम्। शिक्षामन्त्री प्रोक्तं यत् इयं पटलाधारित अंकनप्रणाली पारदर्शितां सुनिश्चेतुं कश्चन प्रगतिशील उपायात्मक मञ्चः वर्तते। सः नवदिल्ल्यां सीबीएसई अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विधाय अनन्तरं

0: वार्ताहरान् सम्बोधितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे अधिकारिणः इदं सुनिश्चयन्ति यत् कस्यापि छात्रस्य जिज्ञासा यथावत् न तिष्ठेत तथा च सर्वेषु स्तरेषु उत्तरदायित्वं सुदृढं स्यात्।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया। उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: पुर ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यतन दिवस भारतस्य कृते अतीव गौरवपूर्ण आसीत। भारतस्य प्रमुख क्रीडका लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, चिराग सेट्टी, सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी इत्यनयोः पुरुष युगलदलं तथा च ध्रुव कपिला तनीसा क्रेष्टो इत्यनयोः मिश्रित युगलदलं च स्व प्रतिस्पर्धासु विजयं प्राप्य प्रागुपान्त्य चक्रे प्रविष्टवन्तः। महिला एकल क्रीडायां षोडश चक्रे पीवी सिंधु जापान देशस्य रीको गुंजी एकविंशति द्वादश इत्यंकांतरालेन पराजितवती। आगामी स्पर्धायां सा दक्षिण कोरिया देशस्य एनके यंग इत्यनेन सह स्पर्धिष्यन्ते। अत्रांतरे पुरुष एकल क्रीडायां थाईलैंड देशस्य द्वितीय वारीयता प्राप्त क्रीडक कुनलावुत विदितर शारनः स्पर्धायाः आरम्भे एव आहतो भूत्वा क्रीडांगणात् बहिर्जातः, येन लक्ष्यसेनः आसयान स्वकीय स्थानं सुरक्षितवान् इति वार्ताः।
2: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ର।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन

0: से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
1: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज। केवल खबर, पूरी खबर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ट्यून करिशंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आमा भितर बहुत जनों को एडवेंचर बहुत भल लगे माने जेमती खतरनाक जिनस को फेस करबा केमिति सेथरो ओवरकम करबा बहुत जनों को सेटा गोटे पैशन माने टिके कष्ट जिनस से मानों को बहुत भल लगे तेबे सेति पई पार्क मध्य हेची यस विपद जनों को जीवों को संगे समय बीता को जो मैंने भल पाती है ऑस्ट्रेलिया रे पार्क यस केज ऑफ डेथ ता ना रखा जाई जोठी पर्यटक मानू गोटे काचर पंजुरी भितर रखा जाए आउ पानी भितर छड़ा जाए आउ ता चारिपटे बड़ बड़ नरभकी कुंभीर माने बोलू था भावत माइंड रे आसबनी सांगे सांग काचर पंजुरी जदि भांगी जाए कौन हम किंतु जो मन को एडवेंचर भल लगे ना से माने कहबे हाँ इटा ही तो दरकार एमिति गले ही लागिबो जे यस आमे किछ गोटे कष्ट काम करिछु विशेष करी सेई मन को पाई ही तयारी ही जेटा

0: गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब

0: पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ट्यून करी शंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो घर समय राति 9:55:06 अबुला स्मृति रे सुनी परिबे परवर्ती गीत तपोई फिल्म रो गीत टिकु गाई शंदी अक्षय कुमार महांति सुजीत महांति गीता पटनायक तृप्ति दास गीत टिकु लेखी शंदी एवं म्यूजिक रे सजी शंदी अक्षय कुमार महांति

ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेनबो एसएमएस रे परवर्ती मेसेज करिछंती सुनील कांत महांती सिल्लू आकृति देवकाली संखतरास कटक रु नमस्कार शुभरात्रि जनैछंती आपनको मध्य नमस्कार शुभरात्रि परवर्ती मेसेज करिछंती हेमंत कुमार महाराणा उत्तमपुर कटक रु सुनिदबा सेमानक मनपसंद गीता

ट्यून करिसन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेनबो एसएमएस रे परवर्ती मेसेज करिसन कल्पना महंती सोम प्रकाश भरतचंद्र नायक सीडीएस सेक्टर 6 कटक रु हालु भाई मेसेज करिसन आठगढ़ रु जय जगन्नाथ जणैछन आपनको मध्य जय जगन्नाथ परवर्ती मेसेज करिसन शिवानी टिक्की मिक्की माणियाबंध बडंबारु जय जगन्नाथ जणैछन आपनको मध्य जय जगन्नाथ गदाधर तरसिया मेसेज करिसन भुवनेश्वर रु शुणीदेव से मन पसंद गीत

ट्यून करी शुंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल रेनबो एसएमएस रे परवर्ती मेसेज करी शुंदी मुनी रानी सोना चंदन संजो संतोष निर्मला मामाली कंतोल आठगड़ परवर्ती मेसेज करी शुंदी प्रभात बड़ियार सिंह चंदन टुनी बांकी कॉलेज बांकी कटक रु हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेन्द्रमणि वर्मा नखेलाल वर्मा मेसेज करी शुंदी छत्तीसगढ़ रु परवर्ती मेसेज उर्मिला निर्मला प्रत्युष प्रभाकर सीडीएस सेक्टर 11 कटक रु मेसेज करी शुंदी नमस्कार जणी छंती आपनको मधे नमस्कार देन झारखंड रु मेसेज करी शुंदी देवेंद्र तांती राकेश तांती प्रकाश निशा कुमारी रेशमा कुमारी दीपाली कुमारी देवेंजी देन मेसेज करी शुंदी किशोरनगर कटक रु बाबन चंद्र पाल ममता पाल जय जगन्नाथ जणी छंती आपनको मधे जय जगन्नाथ देन मेसेज करी छंती इंद्रमणि बेहरा बस्तापड़ा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया।

0: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ट्यून करी शुंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुनिबा आसंता कालीरो कार्यक्रम संपर्क रे सूचना भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्य थाली सुनि परिवे सकाळ 6टा बजे 5 मिनिट रे अति बड़ी श्री जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 50तम भाग सुनि परिवे सकाळ 6टा बजे 40 मिनिट रे आमर स्वास्थ्य सकाळ 7टा बजे 10 मिनिट रे एथरे विषय रहिछि घुंगुडी आलोचना करिवे डाक्टर चिन्मय सुंदर राय सकाळ 7टा बजे 25 मिनिट रे सुनिबे शुभ सकाळ मॉर्निंग मेलोडी सुनि परिवे सकाळ 8टा बजे 30 मिनिट रे डायल इन लाइफ चिटचाट सकाळ 9टा रे एथरे निर्धारित विषय रे फोन कॉल माध्यम रे निज मतामत शेयर करि परिवे रेनबो एसएमएस सुनि परिवे सकाळ 10टा रे दिन 11टा रे सुनि परिवे कार्यक्रम कलाकार पुरुणा हिंदी चलचित्र गीत सुनि परिवे 11टा बजे 30 मिनिट रे दिन 12टा रे सुनिबे कार्यक्रम किछि कथा किछि गीत आज चर्चा रे दिन 1टा बजे 10 मिनिट रे एथरे निर्धारित विषय रे एसएमएस बा व्हाट्सएप माध्यम रे निज मत रखि परिवे पुरुणा ओडिया चलचित्र गीत सुनि परिबे दिन 2टा बजे 45 मिनिट रे दिन 3टा रे सुनि परिबे कार्यक्रम मो देश अपराह्न 4टा रे सुनिबे कार्यक्रम सुरिला आफ्टरनून 4टा बजे 50 मिनिट रे सुनिबे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे पांचटा बजे 2 मिनिट रे सुनिबे डायल इन लाइफ चिटचाट एथरे फोन कॉल माध्यम रे निर्धारित विषय रे निज मत रखि परिबे गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर 32तम भाग सुनि परिबे संध्या 6टा बजे 10 मिनिट रे भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना सुनि परिबे संध्या 6टा बजे 30 मिनिट रे संध्या 7टा बजे 25 मिनिट रे सुनिबे कार्यक्रम संध्या असर राति 8टा बजे 2 मिनिट रे सुनिबे कार्यक्रम गीतर मितरे अभुला स्मृति सुनि परिबे राति 9टा बजे 15 मिनिट रे राति 10टा रे सुनि परिबे आपनको प्रिय कार्यक्रम रेनबो एसएमएस स्टूडियो घर रे समय वर्तमान राति 11टा बजे 10 मिनिट हेबाकु जाउची एठी शेष करूछु आजर अधिवेशन परवर्ती कार्यक्रम रिले करी प्रचार करिवु आकाशवाणी एफएम गोल्ड रु आसंता काली सकाळ 5टा बजे 53 मिनिट पर्यंत पुणि थरे आपनको अभिवादन जणाइबु आसंता काली सकाळ 5टा बजे 55 मिनिट रे से पर्यंत मते विदाय दियंतु शुभरात्री।

समाधान समारोह 2026 बंधुगण मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन थिबा पारिवारिक विवाद दुर्घटना जनित क्षतिपूरण मामला चेक बाउंस मामला भू अधिग्रहण जनित मामला रफा योग्य फौजदारी मामला श्रम विवाद ओ अन्यान्य उपयुक्त मामला जेउथरे आपोस बुझामणा हेबा संभव आगामी अगस्त मास 21 22 ओ 23 तारिख रे एक विशेष लोक अदालत माध्यम रे भारतर माननीय सुप्रीम कोर्ट नुआ दिल्ली ठारे फैसला करा जिवो यार सविशेष विवरणी पाई निकटस्थ आईन सेवा अनुष्ठान किंबा 151 00 रे जोगाजोग करंतु।

0: रोगी को खोला और ठंडा जगह को नहीं ORS किंबा चीनी लुणा सरबत अथवा साधा पानी पियंतु पोशाक गुड़ी को जथा संभव खोली दियंतु मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़ा रे पोछंतु रोगी को पंखा कूलर किंबा एसी पवन रे सुवाई दियंतु अवस्था रे उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किंबा एम्बुलेंस डाकंतु
1: वयस्क तथा असुस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिला को पाई अंशुघातर आशंका अधिक रही थाए
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिशा।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आप मन ट्यून कर शो दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़क दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक कृते वो मित्र आशा अपनक सहित सोशलची सुबह सकाळ र नामे कथा होचे सनस्क्रीन को नेकी हां फेस वॉश क्रीम मेकअप ए सब तो आपण निज सौंदर्य पई करंती किंतु सूर्य क तीव्र किरण रो निज चर्म को सुरक्षा दबा कथा केते थरा आपण मन रखु चांदे अनेक भावंती आज तो टिके मेघवा पागो हिची सनस्क्रीन लगेबा कोन दरकार किबा आज तो मु घरे अछि बाहर को जाउनी म सनस्क्रीन काहे के लगेबे किंतु आमे एठी मन रखिबा दरकार जे युवरे तिबा किरण आम चर्म को प्रभावित करि पारे तेनो मु तो निहाते आज आपण को ए प्रश्न पचारिबे जे आपण घरु बाहर थिबा बेले को जिंसटी भूलंतिनी निज चश्मा ना निज मोबाइल ना निज पानी बोतल ना निज सनस्क्रीन ऑब्वियसली 85% जियो माने निहाते कहिबे कि से माने निजरा सनस्क्रीन को भूलंतिनी किंतु आपण माने कोन भूलंतिनी निहाते भाबरे मते जणि भी पारिबे हमर व्हाट्सएप माध्यम रे आपण निहाते जणि पारिबे 8895254200 सहाय जे किंतु हां मन रखतो चर्मर जत्न केवल सौंदर्य नुह स्वास्थ्यर मध्य गोटे बहुत जरूरी अंश हाँ तो सनस्क्रीन लगेबा निहाती जरूरी है था। आउ अनेकंका स्किन टाइप भी डिफरेंट है था तेनो निज स्किन टाइप को नहीं कि आपण सनस्क्रीन लगान तो जदि आपणकर ऑयली स्किन रहिछे तबे जेल बेस्ड ऑयल फ्री सनस्क्रीन लगातु जदि आपणकर ड्राई स्किन रहुचि तले क्रीम आधारित मॉइश्चराइजर थिबा सनस्क्रीन आपणक पई भल एंड जदि आपणकर सेंसिटिव स्किन आछि तबे मिनरल सनस्क्रीन जोथरे जिंक ऑक्साइड किंबा टाइटेनियम डाइऑक्साइड थाय सेगुडीक साधारणत पई चर्म पई बहुत भल होइता आउ जदि आपणकर कंबाइंड स्किन माने ड्राई आउ ऑयली मिक्स्ड स्किन ताहाले आपण माने हल्का लोशन यूज करि परिबे जेल क्रीम प्रकार रा सनस्क्रीन आजिकाली विभिन्न प्रकार रा सनस्क्रीन मार्केट रे अवेलेबल अछि साधारणत एई सब नेबा बळे आमे एटा ध्यान रखिबा दरकार कि तार एसपीएफ जेमती 50 बट 30 रु अधिक थिबो काहेकि ना एबे जो भली खरा होउची 50 एसपीएफ रु अधिक जति आपण सनस्क्रीन लगाउछन्ते सेटा आपणक स्किन पई सबटु बेटर हेताय खाली सेते कि नो बोर्ड स्पेक्ट्रम भी देखिबा दरकार माने यूवीए प्लस यूवीबी सुरक्षा जहा दोथिबो से सब भी ध्यान देके आपण जेते बळे सनस्क्रीन किणुछन्ते मार्केट रो निहाते बापरे ई सब दिग प्रति ध्यान दियंतो तेबे आज नेशनल सनस्क्रीन डे थिला तेबे सनबर्न रु निजकु रक्षा करबा पई सब बळे टिके टिके सुरक्षा और सचेतनता अवलंबन करंतु एवं निज चर्म को गडी सुंदर उपहार दियंतो सनस्क्रीन लगे के सनबर्न रु निजकु रक्षा करके एई कथा त आपणक सहित आगु को आहुरी म कंटिन्यू करबे किंतु एबे पई ए ब्यूटीफुल सा गीत सुनो थांतो देव मित्र सहित 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक दिल से दिल तक स्टे ट्यून्ड

जिनका शांति आप हमारे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक श्री देव मित्र आशा आपण सहित आसंत वर्तमान समय सुनी नवा आपण समस्त

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक कौन दिल से दिल तक देव मित्र आज आपणक सहित आसंत वर्तमान समय सुनी नवा आपण समस्त पसंद कार्यक्रम मो पसंद केवल केवल आपणकर अति प्रिय एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक।

0: ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଜାସ୍ମିନ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ମୋ ପସନ୍ଦ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ରେ।
1: शुभेच्छा शुभकामना आउ नमस्कार सहित मु नमिता आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे
0: हारी जाइतिबा मनिषकु हात धरी जितेइछ
1: जीवन साथीरे जीवन को जोड़ी मते नुआ जीवन देइछ
0: कहिबिनी केबे तुमे पर बोली तमे मो देहर छाई होई रहिछ हाथ को हाथ छंदी नहीं मो दुख समुद्र को डेई पड़िछ
1: मो एका नुहे केबे भी नुहे तमे बतेई कहिछ
0: मो पागली प्रेमिका साजिछि तुम प्रेम सागर।

0: लेखिचंदी चक्रधर नायक बालिघाई भुआ पुरी रु
1: केबे तुमे मन अनंत गगने तारा भरा जन्म राति पुणी केबे मने आशार लगने मधु फगुणर तिथि पुणी केबे मने आशार लगने मधु फगुणर तिथि
0: केबे जीवनर अंधकारे तुमे मणिमय झरा ज्योति तुमरी परसे लुचई निमिषे घन घोटा अमा राति केबे वैशाख झांजी बुकुचिरी शीतल समीर ताति पुणी केबे मने आशार लगने मधु फगुणर तिथि
1: केबे मरु मने तृषार दहने वर्षा बारिदर छाति एलाई पिपासा झरे टोपा टोपा जल राशि बिंदु माति रचि सबुजिमा सरजे सुषमा झुरे प्राण प्रजापति पुणी केबे मने आशार लगने मधु फगुणर तिथि
0: उजुड़ा जीवन निराशा आसरे केबे तुमे हीरा मोती मौला अधरे आंकी दिय हस तुम मीठा प्रेम प्रीति केबे थाओ मने खुशीर आसने होई अतीतर स्मृति पुणी केबे मने

0: सुंदर सुंदर कविता पठाई थिबारु आपनको धन्यवाद बंधु। हेलो मो पसंद।
1: हेलो मो पसंद।
0: किए कहुचंती?
1: सरोजकांत पात्र।
0: सरोजकांत पात्र कहुचंती पंच पांडव कुसनपुर।
1: आज्ञा आज्ञा।
0: केमिति अछंती?
1: एमके चालसी रे केलर काम चालसी आगु को रज पजा आसी दीटा जे पिला आसी रहिसंती केंद्रापडा साइट रु।
0: माने रज पई स्पेशल आसंती ना एमती रखि देलेनी तांको परमानेंट?
1: ना आगुरु कुआ हे जाई रज दिन हमर सब कपड़ा हबर आनी आगुरु स्टॉक पर रखि देई तो
0: रज आसुचि बोली आपण पूरा प्रस्तुत हे रहिसंती बेसी ऑर्डर आसीबो आ बेसी आपण व्यवसाय बढ़िबो ये तो आपण पाखरे बहुत लोक दियंती ना आपण अंचल लोक?
1: हाँ पाखा पाखी दियंती बालचंदपुर आउ एठी केंद्रापड़ा छत्ता ये मु कनेक्शन करके।

0: जीवन करछन आपण माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दल से दल तक कोंदल से दल तक रे देव मित्र आछ आपणक सहित शो आरंभ होई जाई छी डालिन लाइव रो ये आपण मानंकर फेवरेट शो डालिन लाइव सहित देव मित्र आछ किंतु आमे ओडिया माने ना सबबले के खाइबा प्रेमी हे त ठीक कहले ना यस आमको 9:30 बजे आमको सबबले पई दरकार हेता केवल भात डाली बेले अन्य मन को रुचेनि ता सहित साइड आइटम त निहाती दरकार खाइबा कथा को नेकी ताहले आज म किछ कथा आबी ए भाबु छंदे ना कथा त हेबी किंतु ठीक अलग वेरे हेबी जतबले हम पई घरे किछ खाइबा बना हेता ना आमे बेले बहुत कंप्लेन करतो आज टिके खाइबा लुनिया हे गला आज टिके बेसी राग हो गला आ टिके एमती हेतले भल हेता आंता टिके त मन देकी रोसी करो केबे केबे केही जणा त बिगड़ी जांती कौन ये सब रोसे मु खाइबी नी मत आज खाइबा भल लगुनी मो बाहर अर्डर कर दि ये सब फरमाइश भी था एंड सेकेंड जदि डालमा है जाए कौन आज खाली भात डालमा कर दे तो किसी कर घरे रही रही कौन कर समस्त बहुत सारा कम्प्लेन था खावा को नहीं कि आम घरे माँ को भौणी जेहेतु से मैंने सब बड़े खाइबा बनाती सब आम एम चुटकी रे कम्प्लेन कर दे था कि जो भाई भाव में खरा गरम हो आम घरे सब आम माँ हेले भौणी हेले आपण मानकर वाइफ हेले भाउज माने हेले एमाने समस्ते निजर परिश्रम रे रोसे घरे केते कष्ट पाई कि सबने आम समस्तंको पाई अति स्नेह रे आदर रे खाइबा बने थांती किंतु ता भितरे भी आमे कंप्लेन करी तो केबे प्रशंसा करबा कथा आपण केबे लास्ट जो खाद्य खाइथिले तार प्रशंसा करथिले जे बनेथिबा लोक सामने रे से कथा आपणकर मने अछि भाबुछंते ना केबे करथिले टिके भलसे भाबो तो केबे आपण जी आपण को पई खाइबा बनेथिले तांको आपण टिके तारीफ करथिले तारीफ तो करिवर नाही उल्टा आमे तांको कहिथाउ आज टिके एटा बेटर हेथिले भल हेथांता एटा करथिले भल हेथांता किंतु एबे आमे भाबिबा दरकार ई खरा गरम रे रोसे घरे जो माने भी रोसे करुछंती तांको आमे प्रशंसा करूने कि तो निंदा कहेंगे करिबा तांको खाद्यर निंदा कहेंगे करिबा इत्ते खरा गरम रे आमे कोन तांको सहाय्य करि पारुछे सहायता करि पारुछे तबे आज ए संपर्क रे आपण कोन कहिबे ए खरा गरम रे आपण आपण को घरे रुसे घरे केते हेल्प करुछंती से विषय मते जणंत जणेबा पई डायल करंतो हमर नंबर हियो छे 0671233153 यस शेयर करंतो आपण को कोन रही छे मतामत आपण को कॉल को मो श्योर वेट करबी ऑलरेडी फर्स्ट कॉल आसे छे चलो देखियो हमर फर्स्ट कॉलर के अछन एंड सेकंड कहू छन आज रो टॉपिक को नी हेलो
1: हेलो सर नमस्कार
0: नमस्कार जय जगन्नाथ आपण के कहू छन दी कोड कहू छन दी
1: आभास को तेले टाटा स्टील प्लांट
0: आज रो टॉपिक ऊपर कौन कहबे
1: देखो गरम तो सारा इंडिया सा तो गरम होउची जेतु घरणी माने कर गोटे नित्यदिनिया कर्म रोसे करिबा हाउस वाइफ माने कर आउ जेतु गरम रे सी भी रोसे सारे रे थड़ी पसिजी जो गरम रे निया पाखे होगा गैस पाखे हो तो जेमते बहुत कष्ट करथंती जेतु आमे टिके ताको संगे सहाय्य टिके नदबा आमुक भी टिके भल लागिबनी
0: आपण केबे लास्टली सहाय्य करथिले घरे
1: बहुत थर साहय करते घर को जाए भाउज सांग कि मो वाइफ सांग बहुत थर साय कै भाउज भी एमती कर दी आज सुधा मस से आधा साइज मैंने आज पूरा से हटाली आज रोसे का से कर
0: अच्छा ताले आपण रोसई रे साहब करन के कंप्लेंट करन नि खाइबा को ने कि कोन आज एमती बना है छी कोन आउट के बेटर ही थांदा एमती के कंप्लेंट करन
1: हां कंप्लेंट तो हुए काई ना इठ मेटिक

गीतापनी वेलकम बैक आपण माने ट्यून करशे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडगल सदलतर कोण जे सदलतर क्रीडे व मित्र आशा आपणंग सहित डार्लिंग शो को नेके चालू देखबा नेक्स्ट अमर कलर की आशा ने अनसी कोण कहू जांदी आजर टॉपिक को नेके

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: के कौन कौन कौन
1: मैडम नमस्कार मैं सत्यव्रत साहु जाजपुर को
0: नमस्कार किमती अछन्ते आपण
1: हम भलो
0: अच्छा आपण रोसी करी जानती फर्स्ट क्वेश्चन तो मोर आपण गेयर होइबो
1: हां हां हां निश्चय जानि जे एकर होजी माने निश्चय रोसी करी खाउ जे
0: यस हां आपण ताले हॉस्टल लो आगु को बढी जंदे ना एबे जॉब पई करो जंदे
1: ना ना जॉब पई करो जे हॉस्टल में जॉब पई
0: अच्छा ताले तो आपण निजे रोसी करबा निहाते जानिथिबे ना कोन
1: निश्चय निश्चय
0: निश्चय सब प्रकार आइटम बनन दिन ना नहीं
1: ना
0: सब प्रकार गोटे बाहरे रहउछन्ती निजो कर्म को नहीं की जब घर को जानती सेतबेले घर लोक को टिके रोसी रे हेल्प करन ना भावन की नहीं एबे तो घर को आसी माने टिके रिलैक्सिंग करबे आज गोटे टेस्टी रांधी मो हाथ रंधा खाई किए कौन कहते निहाती भल लगे अच्छा कहते तो गरम रे रोसे करते कष्ट हुए
1: निश्चय कष्ट ड्यूटी सारी मानते आठ घंटा ड्यूटी सरला निजे रोसे कर खाइबा खरा जहा हो गरम जहाँ हो
0: घर को टिके टिके मिस भी करू थे एक कथा को
1: नहीं नहीं जाओ तो सप्ताह थोड़े जाओ तो तेरे लगे नहीं निजे रोसे करते घर भी साहब कर
0: अच्छा ठीक अच्छे सप्ताह को जब भी थोड़े जाऊँगी टिके तो रोसे घर आड़े टिके हेल्प कर दियंतु ओके बहुत बहुत धन्यवाद आपन के सहित कथा बहुत भल लागला नमस्कार आपण भी कॉल करि परबे अंदर नंबर 0671230315 एवं शेयर करि परबे आपण को कहानी मो सहित यस ई खरा गरम रे आपण केते हेल्प करछन्ती रोसे घर निहाते बाबले शेयर करन चलन देखियो हमरा नेक्स्ट कॉलर के आछन्ती एमसी कोन कहछन्ती आज रे टॉपिक को नीकी हेलो
2: जय मा सरला देवमित्र भण नमस्कार
0: जय मा सरला नमस्कार के कहछन्ती कोड कहछन्ती
2: मु रेडुआ बंधु शारदा दास सरला मंदिर कंटापड़ा कहू
0: नमस्कार केमती अछन्ती
2: नमस्कार भले रहछी
0: अच्छा अच्छा कहूँ तो आज टॉपिक उपरे कौन कहिबे आपण खरा गरम रे रोसे घरे सहाय्य करंदी ना नाही आपण को मैडम को
2: बणी दुखर त विषय मु त आपण कहि छी केतरा केतरा चली गलानी समय पलाए मुझे भात डाली डालमा आलु सीझे
0: अच्छा तो रोसे जानी भी रोसे
2: कर कटक था बापा पलास शिखी जा भात डालमा शिखी मैडम जो बाहर तरकारी शिखी जा
0: निर्भर करते जो मैंने भी आमको शुणुंत इंस्पायर हवा दरकार कि जहाँ सेल्फली इंडिपेंडेंट निजे काम निजे
2: सफा कर अवश्य क्या घर गले क्या मो निज घर मुझे कौ जिन कौन
0: अच्छा तो निहाती भाव सब कम आम मनीष निज हाथ में निजे दरकार क्या डिपेंडेंट हवा कथ नु एंड रोसे भी एमती गोटे कम जो निजे निजे ही निज करवा दरकार समस्त शिखा दरकार बहुत भल लगे आपण सहित कथा कि आज मत लगुच पूरा सोरे आपण सहित कथा कि मत बेस मत निज को गोटे सेल्फ मोटिवेशन आसला बहुत बहुत धन्यवाद
2: रही
0: जय मा सरला नमस्कार आपण भी कॉल करि परबे अंदर नंबर 0671230315 रे एवं शेयर करि परबे आपण को कथा मो सहित हां एमिति भी हेई था लाइफ रे बेले बेले लाइफ केतबेला हमको कोठे आनी ठिया करे से कथा केही कहि परबे

0: गीता परिपूर्ण स्वागत है अपने ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटक दल से दिल तक कौन दिल से दिल तक श्री देव मित्र अच्छा अपनों को सही तो शो नहीं किए डाल इन लाइव रोज चलन देखिए नेक्स्ट टाइम को किए डाल कर शांति अंसे कौन कहो शांति आज रे टॉपिक को नहीं हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार
0: के कहो शांति कोड कहो शांति
1: डॉक्टर दर पुष्टि को जी डोंकाली चंडीपुर जाजपुर
0: अच्छा आज रे टॉपिक ऊपर कौन कहबे
1: अजीर टॉपिक ऊपर तो कोई भी गरम घरे समस्त की सहाय कर जो खरा गरम होती
0: जोटा
1: देवे करदेवी किसी असुविधा नहीं
0: अच्छा ये जो 4-5 दिन है बहुत जोर गरम होते रोसे घरे हाथ बटे
1: नहीं मत समय ना मुझे ड्यूटी रही दिन बेला आबे टोटाल समय ना मैसे टोटाल कंटिन्यू ड्यूटी रही घर समय देखनी
0: सन्धे घर को फेर
1: सन्ध्या गला 9-10 हो घर रोसे कर दौरान आगे करे फांका हो
0: अच्छा अच्छा किंतु आपनको समय मिलले आपन हेल्प करनती ना कोन
1: आइया
0: जानी की बहुत खुशी लागिला बहुत धन्यवाद कॉल करथिबल
1: मैडम गोटे कथा मु माने 100 तर परे आज माने एटा लागिला ई कॉलटा
0: जाहो आपनकर कॉल लागि जाई छी सेटा सबुट खुशी रे कथा मते बहुत भल लागिला आपनक सहित कथा है की
1: आइया थैंक यू
0: थैंक यू बले बले आमे जमती एबे भाई जनक कहिले की मु 100 तर चेष्टा कला परे तांको कॉलेज लागै छै परे आमे अन्य मानन को चांस भी दबा दरकार से माने भी आमे पाखरे पहुंचबा दरकार दिल से दिल तक रे कनेक्शन ने समस्तंकर कनेक्ट हे कि रहबा भी बहुत जरूरी सो आपन माने इमती कनेक्टेड हे कि थान तो तालो चलन तो देखिमा हमर नेक्स्ट कलर के आछनी एंड सी कोन कहू छै आज रे टॉपिक को निकी हेलो
1: यार तो लागी जे के आ गया नमस्कार जय जगन्नाथ आ गया
0: नमस्कार जय जगन्नाथ आपण कहा को कहतले लागी जाई छी फाइनली आपण को कॉल
1: आ गया कोटा करो सीजी सेक्टर 6 शुरू वो दीदा करते थी कहत ले गया
0: अच्छा किमती अछंती
1: हां पूरा भलो रे छे गया मु
0: अच्छा आपण को रोसी आसे
1: पूर्व भाई कहते 100 कल 100 कल कर इच्छा जदि भी ना कल कर हाथ बाजी गला तो कल लगे गला मत गोटे
0: पर्सन अच्छा अच्छा खरा गरम भितर आपण घरे रोसी घरे हात पटो बटौ छंदी ना नाही का आपण हेल्प करू छंदी ना नाही
1: रोसी सबू तो मु जाने रोसी करि पारे जाने किंतु जेतु काम दुकान धना हमर टाइम टेबल होती जे अलगा मु घरे रही पारे नि सब समय रोसी समय रूम केबे भी नथाय रोसी घरे केबे समय दे तारे किंतु समय केबे दउथली जेते बेले कोरोना थिला अपन 2020 22 23 पर्यंत ସେଇ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମର ଦୋକାନ ଧନ୍ଦାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବନା ଘଟିଥିଲା ସବୁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଏଇସବୁ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥାଏ ମୁଁ ଆଉ ଯେକୌଣସି ରୋଷେଇ ବାସ ଭଲନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ରୋଷେଇ କରେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ପୁରା ହାଲକା କରିଦିଏ ମୁଁ
0: ହେଲା
1: ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ନନଭେଜ ଉପରେ ଆପଣ ମାଛ କରନ୍ତୁ ଚିକେନ କରନ୍ତୁ ମାଂସ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ଘାଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଡାଲମା କଟା କ୍ଷୀରି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପନିର ବଟର ମସଲା
0: କରନ୍ତୁ
1: ସବୁ ରୋଷେଇ ପାରଙ୍ଗମ ଏମିତି 300-400 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କରିଦେଇପାରିବି କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ ଆଉ ରୋଷେଇଟା ଏକଦମ ହାଲକା ଜାଣିଗଲାକୁ ପଥ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ପୁରୀଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରୀ ବି କରେ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୀ ଛାଣି ବସିବ ମୁଁ ଏକା ଦେଇକି ତାକୁ ଯୋଗେଇ ଦେବି ସେ ଛାଣିଦେବିନି ତା ହାତ ଖାଲି ହବନି ତେବେ
0: ଜାଣିକି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣା ଅଛି ଆପଣ ପୁରା ସିଧ ହସ୍ତ ତ ଏମିତି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଫୁରସତ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ସେ ବି ଟିକେ ହାଲକା ହେବେ

हेलो भाई नमस्कार समस्ते आशा कर बहुत भल समे खुशी रुहतु दिन सारा बहुत समस्त भल ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबोकाटक दिल से दिल तक आज अच्छी आपण सहित सुजाता ढेर सारा कथा हवा मीठा मीठा गीत शुणे से कनेक्टेड रही था 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबोकाटक दिल से दिल तक को समय हो जाए आपणकर फेवरेट शो कलाकार सदी भारतीय संगीत जगत रे अनेक प्रसिद्ध गायक निजर सुमधुर कंठ रे श्रोतांक हृदय जीति छंती हाँ सदी सेमानक मध्यरु अभिजीत भट्टाचार्य जने अत्यंत प्रतिभाशाली और लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर जहांक गीतर माधुर्य सुरीला कंठ और भावपूर्ण गायनशैली बॉलीवुड रे एक अलग स्थान देछि जेमिति विशेषकर शाहरुख खान गाई गीत गुड़िक आज लोक मान मन अमर हो रही हाँ साथी आग को आम विषय ढेर सारा कथा कि बर्तमान शुणी कंठर यह सुंदर गीतटे एंजॉय करता कनेक्टेड रही था 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सहित

हाँ साथी, अभिजीत भट्टाचार्यंक जन्म 30 अक्टोबर 1958 मसीहार उत्तर प्रदेश कानपुर एक बेंगली परिवार रे होइथिला। तांका पिता नाम धीरेन्द्रनाथ भट्टाचार्य और माता नाम कमला देवी भट्टाचार्य।

हाँ साथी, मुंबई रे से अनेक संगीत निर्देशक निकट को जाई अवसर खोजुथिले। तंका भाग्य परिवर्तन हैला जेतेबेले प्रसिद्ध संगीत निर्देशक आरडी बर्मन तंकु कंठ को पसंद करिथिले। से तंका आनंद और आनंद चलचित्र रे गीत गाइबा को सुजोग देथिले, जहाँ तंका जीवन रो प्रथम बड़ा सुजोग होइथिला। जेउ चलचित्र कि से किशोर कुमार, आशा भोसले और लता मंगेशकर भली महान गायक गाइबार सुजोग पाइथिले।

उनको बैक वन सेकंड ट्यून कर चुन्दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो जाली ची कलाकार हाँ साथी परे से बाघी चलचित्र रे गीत एक चंचल सहे हसीना तंग विशेष लोकप्रियता देइथला जहां यह परे परे बॉलीवुड रे एक परिचित नाम मध्य होइथला 1990 दशक रे तंकर अनेक गीत बहुत सुपरहिट मध्य होइथला जेमिति की रोमांटिक गीत गाई बारे से विशेष प्रसिद्ध लाभ करथिले हां साथी अभिजीत को गाने रे एक विशेष दिग हेउछि शाहरुख खान को पई तंका गीत गुडी का यस बॉस बादशाह चलते चलते मैं हूं ना दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे परी चलचित्र से अनेक सुपरहिट गीत मध्य गाइथिले ओले ओले तुम्हें जो मैंने देखा वादा रहा सनम चांद तेरा सुनो सुनो ना परी गीत आज मध्य लोकप्रिय अनेक श्रोता मन मध्य मने करन जे शाहरुख खान का पर्दा अभिनय सह अभिजीत का कंठ बहुत भला मेड़ खाउथला

वेलकम बैक वन सेकंड ट्यून करिछन्दी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चले छे केछी कथा केछी गीत साथी हसर भौरी केवल आनंद नहि या मनुष्यत्वर परिचय दे थाय जेउठारे हस अछि सेठारे देश घृणार स्थान न थाय हसुथिबा लोक माने निकट को आनि थांती एक संपर्क मजबूत करि थाय जने गरीब लोकंकर सरल हस मध्य अनेक समय रे धनी लोकंक आडंबर ठारु अधिक मूल्यवान लगे सतरे साथी आमे समस्त जदि निज जीवन रे हस को स्थान देबा ना तेबे पृथ्वी अधिक सुंदर हबो अन्य मानंक खुशी देबा ओ हसैबा हेउजे एक बड पुण्य काम जीवन रे जेते दुख आसुना काहेकि आमे हसी हसी सेगुडी को सामना करबा उचित हस मनीष को दृढ़ करे ओ आशा देथाय ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ହସିବା ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହସେଇବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟିକିଏ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଣି ଦେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତୁ 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ ସହିତ

0: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
1: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
0: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
1: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर,
0: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर पूरी खबर।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका

में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स ट्यून कर छथि 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को डीपी छै अपन को सहित तो आशा कर छी अपन समस्त निजरा लॉन्च सारी सारी थिवे खरारु दूरी के रही थिवे निजो को सुरक्षित रखि थिवे एबे खरार प्रकोप जेतु मे मास चली छे एवं मे मासरे खरार प्रकोप विशेष बाबरे देखिवा को मिलुछे तेनो नियति बाबरे निजो को सुरक्षित स्थान रे रखंतु ई समय रे खरा समय रे बाहर को जेते चेष्टा करुछंती जेते कम बाहरिबा को चेष्टा करंतु एवं जदि भी बाहरु छंती कोनोसी जरूरी परिस्थिति रे सेते बेले निजो सहित पानी बोतल छत्ता संगरे नी चालंतु एवं निजो को सुस्थ एवं सुरक्षित रखंतु सो फ्रेंड्स तो आरंभ हो जाइछि हमर देशभक्ति कार्यक्रम मो देश आज मो देश रे आमे कथा बा गुटे इमिति वाक्य जहाँ प्रत्येकटी भारतीयों को मन रे एक स्वतंत्र गर्व आनी दिए से वाक्यटी होउछि एई मो देश भारत ए वाक्यटी केवल गुटे कथा नुहे एहा को कहिबा बेले भारतीयों को मन रे देशर महानता संस्कृति ओ परंपरा को मने पकाए कथा बा पूरा घंटा एहरि ऊपर किंतु ता पूर्वरु ए गीतटी केवल आपणक पई सुनतांतु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को अन कहतांतु दिल से दिल तक
1: इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद